0: Hai, saya Tasha dari UIA. Siapa kata Gen Z tak suka dengar radio? Saya suka je. Saya dengar KLFM. Ini baru KL.
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।